उकाबार डाली की बना हूँ। सिड़ी सिड़ी की वो नहीं रोई रोई की ईजा आड़िया बिकामी था ही इदा सिड़ी सिड़ी की इथोनी नी दियोगा की इदा सिड़ी सिड़ी की हा नाजा जा खाने नी दियोगा की जाबुनी हा नाजा जा उखाने।